महाराज कहिंदे भावें तुसीं जिन्ने मर्जी अपने वल्लों यतन कर लो, जिवें भाई साहब भाई गुरदास जी ने कहा ना, बाझों गुरु गुबार है, गुरु तो बिना सोझी नहीं आनी, गुरु तो बिना ज्ञान नहीं किसी ने देना। तो महाराज कहिंदे एक गल ध्यान रखियो, जे तुसीं गुरु मत छड़ के होर होर मत धारण करके अपने अपने वल्लों जत सत संजम कर्म कमावै, तुसीं आ वाले कर्म कमाओगे तो बिन गुर गत नहीं पाई, गुरु तो बिना गति नहीं होनी। असी हुण जत सत और संजम, सतगुरु गुरु महाराज जी समझाउंदे आ, जत दा मतलब हुंदा काम वासनावां तो अपने आप नूं परे रखण दा यतन करना, सत दा मतलब हुंदा जिवें सबर, सत दा अर्थ हुंदा दान देना, सत दे कई अर्थ ने, सत उच्चा आचरण, सत तो भाव है कि दान देना, सत तो भाव है सबर। महाराज कहिंदे तू अपने वल्लों जिन्ना मर्जी यतन कर, संजम, संजम मतलब इंद्रियां नूं काबू करना, किस तरह तीर्थां ते जाके पुठे लटक के जां अन्न छड के वर्त रख के कन्नां च मुंदरां पा के वख वख तरीकियां नाल तू ये कर्म कर, पर बिन गुर गत नहीं पाई, गुरु दे ज्ञान तो बिना तेरी गति नहीं हो सकती। गुर बिन घोर अंधार, गुरु बिन समझ ना आवे। गुरु अमरदास महाराज बाहर दियां यात्रावां कर ही रहे ने, गुरु महाराज ने भी ये कर्म किते ने, पर पता लग गया ने गुरे का है नाऊ बुरा, भी गुरु दी शरण विच आके ही गल बननी है, ते सब कुछ छड के पहुंच गए गुरु अंगद देव महाराज दे दर ते, सेवा सिमरन दे विच जुड़ गए, शब्द दी टकसाल विच अपने आप नूं घड़ दिता अंदर, घड़ी है शब्द सच्ची टकसाल। तां महाराज कहिंदे तुसीं जिन्ने मर्जी फोकट कर्म कर लो, पर सच तां इह है कि बिन गुर गत नहीं पाई, तुहाडी गति गुरु दे ज्ञान तो बिना नहीं।

ध्यान रखियो, मतां देण वाले दुनिया च बहुत ने, बड़े मिल जाणगे तुहानू। कोई पूरब वल नू लैके तुरेगा, कोई पछम नू, कोई उत्तर नू, कोई दक्खण नू, कोई तुहानू मस्या दी मत दे देगा, कोई पूर्णमाशी दी मत दे देगा, कोई तुहानू कोई मत दे देगा, कोई किसे तरह दी मत दे देगा। पर जिहड़े वाहिगुरु दी शरण विच आए उहनां नू गुरु दी मत मिलदी है, ते जिन्हां नू गुरु दी मत मिल जाए उहनां नू फिर किसे होर मत दी लोड़ नहीं पैंदी, क्योंकि उत्तम मत मिल गई ना, उहनां नू श्रेष्ठ मत मिल गई। हुण सानू दूजियां दी मतां लैण दी लोड़ क्यों पै रही है? असीं दूजियां दी मत क्यों लै रहे हां? क्योंकि साड़ी अपनी मत थोड़ी है, कम नहीं करती। असी गुरु महाराज कोल आके ये बेनती करनी है, तू समरथ वड्डा मेरी मत थोड़ी राम, वाहिगुरु जी मेरी तुच्छ जी मत है, नहीं कम कर रही, एवें मैं लोकां मगर सियाणियां मगर तुरिया फिरा, तुहाडी शरण विच आया, मेरी अधूरी मत नू पूरा कर दिओ, तुसी मैनू गुरमत दे दिओ ताकि दुरमत नाश हो जाए। गुर मत ते दुरमत, अगे गग्गा जिहड़े ते दद्दा ही अखर है ना, तुसी दद्दे नू हटा के गग्गा ले आओ गुरमत, ते गग्गा हटा के दद्दा ला दिओ ते दुरमत। बस एक अखर दा फर्क है, पर एक अखर ने जिंदगी बदल देनी है। दुरमत ने कुराहे पा देना, मंजिल तो दूर ले जाना, बेकारां दी अग्नि ने साड़ बल जिहड़ा साड़ देना, पर जिहड़ी गुरमत है इन्हें तुहानू बेकारां दी अग्नि तो बचा लेना है। गुरु दी मत ने तुहानू कुराहे पए हुए नू सीधे मार्ग ते पा देना है। तां महाराज जी फिर समझाउंदे आ, साहिब कहिंदे जो हर मत दे सा उपजै, जो भांडे विच पैना उही बाहर आउणा है, ते भांडे विच जदों वाहिगुरु जी ने मत दे दित्ती उही मत फिर बाहर आई। होर मत न काई राम, होर कोई मत उहदे अंदरों निकलदी नज़र नहीं आउंदी, उहदे जीवन विचों, उहदे आचरण विचों, उहदे कर्म विचों किसे होर दी मत नज़र नहीं आउंदी, क्योंकि उहनूं हरी ने मत देती, उन्हों वाहिगुरु जी ने मत दे दित्ती, उहदे अंदरों हुण गुरु दी मत ही निकलदी है। जो भांडे दे विच वस्त है उही भांडे विचों वस्त निकलनी है, ते जिन्हें गुरु दी मत ले ली उहदे अंदरों फिर गुरु दी मत ही निकलेगी, उहदे चों कोई होर मत नज़र नहीं आएगी, मन मत नहीं नज़र आएगी। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਿਰਪਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜੋ ਹਰ ਮਤ ਦੇ ਸਾ ਉਪਜੈ ਹੋਰ ਮਤ ਨਾ ਕਾਈ ਰਾਮ, ਉਹ ਫਿਰ ਮਨ ਮਤ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨਹੀਂ।

हे वाहिगुरु जी, जिन्हों तुहाडी मत मिल गई, जिहड़ा गुरमत दा धारनी बन गया, वडभागी साध संग प्राप्त, तिन भेटत दुरमत खोई। जिन्हों गुरु दी संगत मिल गई ते गुरु दी मत मिल गई, दुरमत खोई, उहदे अंदरों भैड़ी मत खत्म हो गई। ते जिहदे अंदरों भैड़ी मत खत्म हो गई, उन्हों की अनुभव हुंदा, उन्हों की महसूस हुंदा। अंतर बाहर एक तू, ये वाहिगुरु अंदर भी तू है ते बाहर भी तू है, घर बाहर तेरा परवासा तू, जन के हैं संग। ना सानू वो बाहरों महसूस हो रहा है, ना अंदरों हो रहा है, असी बाहरों भी खाली हाँ ते अंदरों भी खाली हैं। सानू दे बाहरों भी नहीं महसूस हो रहा ते ना अंदरों महसूस हो रहा, पर जिन्हों वाहिगुरु जी की मत मिल गई है, वह फिर ये बेनती करता भी महाराज हुण मैनू समझ आ गई कि बाहर भी तू है ते अंदर भी तू है। पर ये नहीं कि मैं अपनी मत नाल, ये नहीं कि हुण मैं कहां जी मैं अपनी मत नाल ये जान लिया, नहीं, तू आपे दे बुझाई राव, ये तू आपे ही ये मैनू सोझी दिती है, इहदे च मेरा कोई रोल नहीं है। हुण ये जिहड़ा तू है ना, तू ये दिली दीपक है। दिली दीपक मतलब दहलीज विच दीपक रख दे ना, दीवा अंदर भी रोशनी करेगा ते बाहर भी रोशनी करेगा। जे कमरे दे अंदर रखोगे ते अंदर ही रोशनी होनी है, बाहर नहीं। जे बाहर रखोगे ते बाहर होनी है, अंदर नहीं। पर जे उसनू दरवाजे दे विच रखो, दहलीज विच, फिर वह बाहर भी रोशनी करता है, अंदर भी करता है। ये कई ऐसे अक्षर ने जिहड़े दोवें पासे लगते हैं, पंक्ति दे अर्थ करन लगियां। महाराज जी अंतर बाहर एक तू, अंदर भी तू है बाहर भी तू है, तू आपे दे बुझाई राम, ये तुसी आपे ही मैनू ये गल बुझा दिती, अनुभव करवाता, ये तुसी आप ही मैनू सोझी दे दिती है। क्यों? क्योंकि मैं अपनी मत छड के जदों तुहाडी मत ले ली, ये तां जाके गल समझ आई। मेरी मत तो कहती रब है ही नहीं, मेरी मत कहती है जे रब होएगा किते आसमान ते होएगा, वह किहड़ा देखदा सुणदा, ये मत है। पर जदों गुरु की मत ली तो पता लगा भी वह तो घर के अंदर भी है तो घर के बाहर भी है। जदों गुरु की मत ली फिर पता लगा दुकालं परनासी दयालं स्वरूपे सदा अंग संगे या भंगंग बैपूते, वो तो सदा अंग संग है, वो तो सदा मेरे नाल नाल है, वो हर वेले मेरे नाल है, मेरे अंदर वसदा है। ये जदों गुरु की मत ली है, हुण इत्थे मैं नहीं हाँ कि मैं आ कीता तां मैनू समझ आई, मैं आ कीता नहीं। वाहिगुरु जी ने आप ही जिन्हां नूं इह बुझा दिता, उन्हां नूं इह अनुभव हो गया कि वह घर के अंदर और बाहर आप ही सबना विच तू वरतदा मेरे शाह। इस मेरे कले मेरे नाल नहीं, भी मेरे घर दे बाहर भी घर दे अंदर भी तू है, मेरे नाल पूरे संसार विच ही हर एक दे नाल तू घर दे अंदर भी वरत रहे हैं, घर दे बाहर भी वरत रहे हैं। पर जेड़ा मन मतियां सी उन्हों समझ नहीं आई, जेड़ा गुरमतियां हो गया उन्हों समझ आ गई, गुरु की मत लैके। सतगुरु गुरु अमरदास महाराज समय

आप एक गल बुझा दिती, बुझा मतलब समझाती, बुझा ये भी हुंदा भी जिमें मोमबत्ती जग रही ना असी कहने बुझा दियो, लाइट जग रही असी कहने बुझा, यो बड़ा बुझा नहीं है। इत्थे है समझा दिता अपनी मत दे के, वाहिगुरु आपे दे बुझाई, तुसी आपे ही मैनू मत दे के ये समझा दिता है। अवर ना भाई, हुण मैनू कोई होर पाउंदा ही नहीं है, भाई मतलब पाउंदा, मैनू हुण होर कोई नहीं पाउंदा, होर कोई चंगा नहीं लगदा। गुरमुख हर रस चाखिया, जदों दा मैं गुरु दे सनमुख हो के हरी दे नाम दा रस चख लिया। असी इत्थे कादे लई आए हैं? इस शब्द दा रस चखण लई आए हैं, कीर्तन दे राही, पाठ दे राही, कथा दे राही, गुरु महाराज दे हुक्म दे द्वारा असी ये रस चखण लई आए हैं। किसे तरह चख तां लईए, भावें गुरु साहब दा हुक्म सुन के चख लो, भावें कीर्तन सुन के चख लो, भावें विचार सुन के चख लो, किसे तरह ये रस चख लईए। और ये मन ने रस चखना है, जुबान ने नहीं, ये मन ने चखना है। जदों मन चख लेगा फिर इनू समझ आ जाएगी, फिर अवर ना भाई इनू कोई होर नहीं पाएगा, फिर मत्तां देण वाले भावें सौ आ जाण, इनू किसे दी मत चंगी नहीं लगेगी जिन्हें नाम रस चख लिया। सतगुरु महाराज जी

संता पुत्रे सुनी सच्ची वाणी शांत साजन पहे सर से पूरे गुरते जानी सुनते पुनीत कहते पुत सत।

कहते पुरत सतगुर रह पर पूरे दिनवंत नान गुर चरण लागे वाजे अनहतूरे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। तू ठाकुर।

सुकोटल गुरु सेविया अहन सु सहज सुभाए दर्शन परसया गुरु कै जन्म मरण दुख जाए होवै सिफ दुख समदी

निरुपाव निरवैर अकाल मूरत अदुनी सर्वं गुरुप्रसाद एक ओंकार सतनाम कर्ता पुरख निरपाव निरवैर अकाल मूरत अदुनी सर्वं गुरुप्रसाद वाहे गुरु।

सब सिखन को हुक्म है, गुरु ग्रंथ जी माने ओ, जो प्रभु को मिल बोच है, राज करेगा खालसा, खुआर

ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਸੁਣ ਵੱਡਾ ਆਖੇ ਸਭ ਕੋਏ ਕੇਵੜ ਵੱਡਾ ਡੀਠਾ ਹੋਏ ਕੀਮਤ ਪਾਏ ਨਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏ ਕਹਿਣੇ ਵਾਲੇ ਤੇਰੇ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਵੱਡੇ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬਾ ਗਹਿਰ ਗਮੀਰਾ ਗੁਣੀ ਗਹੀਰਾ ਕੋਏ ਨਾ ਜਾਣੇ ਤੇਰਾ ਕੀਤਾ ਕੇਵੜ ਚੀਰਾ ਰਹਾਉ ਸਭ ਸੁਰਤੀ ਮਿਲ ਸੁਰਤ ਕਮਾਈ ਸਭ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਕੀਮਤ ਪਾਈ ਗਿਆਨੀ ਧਿਆਨੀ ਗੁਰ ਗੁਰਹਾਈ ਕਹਿਣ ਨ ਜਾਈ ਤੇਰੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਸਭ ਸਤ ਸਭ ਤਪ ਸਭ ਚੰਗਿਆਈਆਂ ਸਿੱਧਾਂ ਪੁਰਖਾਂ ਕੀਆਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਤੁਧਣ ਸਿੱਧੀ ਕਿੰਨੇ ਨਾ ਪਾਈਆ ਕਰਮ ਮਿਲੇ ਨਾਹੀ ਠਾਕ ਰਹਾਈਆ ਆਖਣ ਵਾਲਾ ਕਿਆ ਵੇਚਾਰਾ ਸਿਫਤੀ ਭਰੇ ਤੇਰੇ ਭੰਡਾਰਾ ਜਿਸ ਤੋਂ ਦੇਹੇ ਤਿਸੇ ਕਿਆ ਚਾਰਾ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਸਵਾਰ ਨਹਾਰਾ ਆਸਾ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਵਿਸਰੈ ਮਰ ਜਾਊਂ ਆਖਣ ਔਖਾ ਸਾਚਾ ਨਾਊਂ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਲਾਗੇ ਭੂਖ ਉਤ ਭੁੱਖੇ ਖਾਏ ਚਲਿਹੈ ਦੁੱਖ ਸੋ ਕਿਉਂ ਵਿਸਰੈ ਮੇਰੀ ਮਾਏ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਸਾਚੇ ਨਾਏ ਰਹਾਉ ਸਾਚੇ ਨਾਮ ਕੀ ਤਿਲ ਵਡਿਆਈ ਆਖ ਥੱਕੇ ਕੀਮਤ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਜੇ ਸਭ ਮਿਲ ਕੇ ਆਖਣ ਪਾਹੇ ਵੱਡਾ ਨਾ ਹੋਵੇ ਘਾਟ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾ ਉਹ ਮਰੇ ਨਾ ਹੋਵੇ ਸੋਗ ਦਿੰਦਾ ਰਹੇ ਨਾ ਚੁੱਕੈ ਭੋਗ ਗੁਣੇ ਹੋਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ ਨਾ ਕੋ ਹੋਆ ਨਾ ਕੋ ਹੋਏ ਜੇ ਵੱਡ ਆਪ ਤੇ ਵੱਡ ਤੇਰੀ ਦਾਤ ਜੈਨਾ ਦਿਨ ਕਰਕੇ ਕੀਤੀ ਰਾਤ ਖਸਮ ਵਿਸਾਰੇ ਤੇ ਕਮਜਾਤ ਨਾਨਕ ਨਾਵੇ ਬਾਹਿਸਨਾਥ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਚੌਥਾ ਹਰ ਕੇ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸਤਿਪੁਰਖਾਂ ਬਿਨੋ ਕਰੋ ਗੁਰ ਪਾਸ ਹਮ ਕੀਰੇ ਕਿਰਮ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਣਾਈ ਕਰ ਦਇਆ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਮੇਰੇ ਮੀਤ ਗੁਰਦੇਵ ਮੋਕੋ ਰਾਮ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਗੁਰਮਤ ਨਾਮ ਮੇਰਾ ਪ੍ਰਾਣ ਸਖਾਈ ਹਰ ਕੀਰਤ ਹਮਰੀ ਰਹਿ ਰਾਸ ਰਹਾਉ ਹਰ ਜਨ ਕੇ ਵਡ ਭਾਗ ਵਡੇਰੇ ਜੈਨਾ ਹਰ ਹਰ ਸ਼ਰਧਾ ਹਰ ਪਿਆਸ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਮਿਲੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਸਹੀ ਮਿਲ ਸੰਗਤ ਗੁਣ ਪਰਗਾਸ ਜਿਨਾ ਹਰ ਹਰ ਹਰ ਰਸ ਨਾਮ ਨਾ ਪਾਇਆ ਤੇ ਭਾਗਹੀਨ ਜਮ ਪਾਸ ਜੋ ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਰਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵੇ ਤ੍ਰਿਗ ਜੀਵਾਸ ਜਿਨ ਹਰ ਜਨ ਸਤਿਗੁਰ ਸੰਗਤ ਪਾਈ ਤਿੰਨ ਧੁਰ ਮਾਸਤਕ ਲਿਖਿਆ ਲਿਖਾਸ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਜਿਤ ਹਰ ਰਸ ਪਾਇਆ ਮਿਲ ਜਨ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਪ੍ਰਗਾਸ ਰਾਗ ਗੁਜਰੀ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਕਾਹੇ ਰੇ ਮਾਨ ਚਿਤਵਹੇ ਉਦਮ ਜਾ ਆਹਰ ਹਰ ਜੀਓ ਪਰਿਆ ਸੈਲ ਪੱਥਰ ਮੈਂ ਜੰਤ ਉਪਾਏ ਤਾਕਾ ਰਿਜ਼ਕ ਆਗੇ ਕਰ ਧਰਿਆ ਮੇਰੇ ਮਾਧੋ ਜੀ ਸਤਸੰਗਤ ਮਿਲੇ ਸੋ ਤਰਿਆ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਇਆ ਸੂਕੇ ਕਾਸ਼ਟ ਹਰਿਆ ਰਹਾਉ ਜਨਨਾ ਪਿਤਾ ਲੋਕ ਸੁਤ ਬਾਇਤਾ ਕੋਏ ਨਾ ਕਿਸਕੀ ਤਰਿਆ ਸਿਰ ਸੇ ਰਿਜਕ ਸਮਾਹੇ ਠਾਕੁਰ ਕਾਹੇ ਮਨ ਭਉ ਕਰਿਆ ਊੜੇ ਊੜ ਆਵੈ ਸੈਂ ਕੁੰਸਾਂ ਤਿਸ ਪਾਛੇ ਵਚਰੇ ਛਰਿਆ ਤਿਨ ਕਵਣ ਖਲਾਵੈ ਕਵਣ ਚੁਗਾਵੈ
मन में सिमरन क्रया सब निदान दस अष्ट सदान ठाकुर कर तल त्रया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा बरिया सब निदान दस अष्ट सिदान ठाकुर कर तल त्रया जन नानक बल बल सद बल जाइए तेरा अंत ना पारा बरिया राग आसा महला चौथा सो पुरख एक ओंकार सतगुर प्रसाद सो पुरख नरंजन हर पुरख नरंजन हर गम्मा गम्मा पारा सब ते आवहें सब ते आवहें तुद जी हर सच्चे सिरजन हारा सब जी तुम्हारे जी तू जिया का दातारा हर ते आवहो संतो जी सब दुख विसारन हारा हर आपे ठाकुर हर आपे सेवक जी क्या नानक जंत विचारा तू घट घट अंतर सर्व निरंतर जी हर एको पुरख समाणा एक दाते एक पेखारी जी सब तेरे चोज बडाणा तू आपे दाता आपे भुगता जी हों तुद बिन अवर ना जाना तू पार ब्रह्म बेअंत बेअंत जी तेरे क्या गुण आख वखाणा जो सेव है जो सेव है तुद जी जन नानक तिन कुरबाणा हर ते आवहे हर ते आवहे तुद जी से जन जुग में सुखवासी से मुक्त पाए जैन हर ते आया जी तेन टूटी जमकी फांसी जिन निरपौ जिन हर निरपौ ते आया जी तिनका पौ सब गवासी जिन सेव्या जिन सेव्या मेरा हर जी ते हर हर रूप समासी से धन जिन हर त्याया जी जन नानक तिन बल जासी तेरी भगत भंडार जी भरे बेअंत बेअंता तेरे भगत सलाहन तुद जी हर अनेक अनेक अनंता तेरी अनेक करें हर पूजा जी तप तापहें जपहें बयंता तेरे अनेक पढ़ें बहु सिमरत शास्त्र जी कर किरिया खट कर्म करंता से भगत भले जन नानक जी जो पावे मेरे हर भगवंता तू आद पुरख अपरंपर करता जी तुद जे बड़े अवर ना कोई तू जुग जुग एको सदा सदा तू एको जी तू नहीं चल करता सोई तुदे आपे पावे सोई वरत जी तू आपे करहें सो होई तुदे आपे सृष्ट सब उपाई जी तुदे आपे सिरे सब गोई जन नानक गुण गावे करते के जी जो सबसे का जानोई आसा महला चौथा तू करता सचियार मेंडा साई जो तो भावे सोई थीसी जो तू देहे सोई हो पाई रहाओ सब तेरी तू सबनी तिहाया जिसनों कृपा करें तिन नाम रतन पाया गुरमुख लादा मन मुगवाया
तुदे आप विछोड़िया आप मिलाया, तू दरिया ओ सब तुझ ही माहे, तुझ बिन दूजा कोई नाहे, जी जन सब तेरा खेल, विजोग मिल विछोड़िया संजोगी मेल, जिसनों तू जान है सोई जन जाने, हर गुण सद ही आख वखाणे, जिन हर सेवया तिन सुख पाया, सहजे ही हर नाम समाया, तू आपे करता तेरा किया सब होए, तुद में दूजा अवर ना कोए, तू कर कर वेखे जाने सोए, जन नानक गुरमुख प्रगट होए, आसा महला पहला, तित सरवरड़ भैरे निवासा, पानी पावक तिन्हे किया, पंक जो मोह पग नहीं चले, हम दिखा तहें डूबियले, मान एक न चेतस मूड मना, हर विसर तेरे गुण गलिया रहाओ, ना हो जति सती नहीं पड़या, मूरख मुगदा जन्म पया, प्रणवंत नानक तिनकी शरणा, जैन पूना ही विसरिया, आसा महला पंजवा, भई प्रापत मानुक देहुरिया, गोविंद मिलन की एह तेरी बरिया, अवर काज तेरा किते ना काम, मेला साध संगत भाजे केवल नाम, स्रंजा लाग पव जल तरन कै, जन्म वृथा जात रंग माया कह रहाओ, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की रखो शर्मा, जप तप संजम धर्म ना कमाया, सेवा साध ना जन्या हर राया, कहो नानक हम नीच करमा, शरण परे की रखो शर्मा। इको ओंकार श्री वाहिगुरु जी की फतेह, पातशाही दसवीं, कबी उबाच बेनती चाओ पाई, अमरी करोहा दै रक्षा, पूर्ण होए चित्त की इच्छा, तब चरणन मन रहे हमारा, अपना जान करो प्रतपारा, हमरे दुष्ट सवय तुम काबो हो, आप हाथ दे मोहे बचाव हो, सुखी बसे मोरो परवारा, सेवक सिख सवे करतारा, मोर अच्छा निज कर दे करिए, सवैरन को आय संगरिए, पूर्ण होए हमारी आसा, तोर भजन की रहे प्यासा, तुम्हें छाड़ कोई अवर ना त्याऊं, जो वर चहो सो तुम ते पाऊं, सेवक सिख मारे तारिये, चुन चुन शतर हमारे मारिये, आप हाथ दे मुझे उबरिए, मरण काल का त्रास निवरिए, हो जो सदा हमारे पच्छा, श्रीअस्तु जो करिहो रक्षा, राख लियो मोहे रखण हारे, साहेब संत सहाय प्यारे, दीन बन दुष्टन के हंता, तुम हो पुरी चतर दसकंता, काल पाए ब्रह्मा बप तराओ,
काल पाए शिवजू अवतरा, काल पाए कर विसन प्रकाशा, सकल काल का किया तमाशा। जमन काल जोगी शिव कियो, वेदराज ब्रह्मा जू थियो। जमन काल सब लोक सवारा, नमस्कार है तहें हमारा। जमन काल सब जगत बनायो, देव दैंत जक्षण उपजायो। आदि अंत एक अवतार, सोई गुरु समझियो हमारा। नमस्कार तिस ही को हमारी, सकल प्रजाजन आप सवारी। शिवकन को शिव गुण सुख दियो, शत्रण को पलमो बद कियो। कटकट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछानत। चिंटी ते कुंचर अस्थूला, सब पर कृपा दृष्ट कर फूला। संतन दुख पाए ते दुखी, सुख पाए साधन के सुखी। एक एक की पीर बजाने, घड़ घड़ के पड़ भट की जाने। जाब उदकर्क करा कर तारा, प्रजा तरत तव देह अपारा। जब आकर्ख करतो हूँ कब हूँ, तुम मैं मिलत देह धर सब हूँ। जेते बदन श्रेष्ठ सब तारे, आप अपनी बूझ उचारे। तुम सब ही तेरे तुन रालम, जानत भेद भेद अर आलम। ड्रंकार निर्विकार निर्लंब, आद अनिल अनाद असंभ। ताका मूड़े उचारत भेदा, जाको भेव ना पावत बेदा। ताको कृपाहण अनुमानत, महामूड़ कछ भेद ना जानत। महादेव को कहत सदा शिव, ड्रंकार का चीनत न पिव। आप अपनी बुध है जेती, बरनत भिन्न भिन्न तो है तेती। तुमरा लखाना जाए पसारा, केह विदिस जा प्रथम संसारा। एक रूप अनूप स्वरूपा, रंग भयो राव कहीं पूपा। अंड जेर से तजकीनी, उत्पज खान बहुर रच दीनी। कहो फूल राजा हवाए बैठा, कहो सिमट भयो शंकर अकैठा। सगरी सृष्ट दिखाए अचंभव, आ जुगाए स्रू स्वयंभव। अब रक्षा मेरी तुम करो, सिख्यो वार असिख संघरो। दुष्ट जिते उठवत उत्पाता, सकल मलेच करो रण गाता। जे अस्तु जे तब शरणी बरे, तिनके दुष्ट दुख्त हवाए मरे। पुरख जमन पग परे तिहारे, तिनके तुम संकट सब टारे। जो कल को एक बार ते है, ताके काल निकट न है। रक्षा हुए ताही सब कला, दुष्ट अरिष्ट तरे तत्काला। कृपा दृष्ट तन जाहे न हरयो, ताकि ताप तनक मै हर हो। रिद्ध सिद्ध कर्म सब होई, दुष्ट शहा शवाय सके ना कोई। एक बार जिन तुम्हें सवारा, काल फांसती ताहि ओबारा। जिन नारे नाम तेहारो
कहा दारिद्र दुष्ट दोख तेरा खड़ग की मैं शरण तिहारी आपो हाथ दै लेहो ओबारी सर्वठोर मोहो हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई खड़ग कीत मैं शरण तिहारी आपो हाथ दै लेहो ओवारी सर्वठोर मोहो हो सहाई दुष्ट दोख ते लेहो बचाई सवैया पाई गहे जबते तुम्हारे तबते को आंख तरह नहीं अन्यो राम रहीम प्राण कुरान अनेक कहे मत एक ना मान्यो सिमृत शास्त्र वेद सभाए बहुपेद कहे हम एक ना जान्यो सिरियस पान कृपा तुमरी कर मैं ना कहो सब तो ही बखाने दोहरा सगल द्वार कौ छड के गए हो तोहारो द्वार बाही गए की लाज अस गोविंदास तोहा सगल द्वार कौ छड के गए हो तोहारो द्वार बाही गए की लाज अस गोविंदास तोहा राम कली महला तीजा अनंत एक ओंकार सतगुर प्रसाद आनंद पाया मेरी माए सतगुरु मैं पाया सतगुर ता वाया सह सेती मन वजियां वादाइया राग रतन परवार परिया शब्द गावन आइया शब्दो तंगावो हरि केरा मान जिनी वसाया कहे नानक आनंद हुआ सतगुरु मैं पाया ए मन मेरिया तू सदा रहो हर नाले हर नाल रहो तू मन मेरे दुख सब मिसारना अंगीकार ओह करे तेरा कर सब सवरना सोना गल्ला सुमृत स्वामी सो क्यों मनो मसारे कहे नानक मन मेरे सदा रहो हर नाले सच्चे साहेबा क्या नाही घर तेरा घर ता तेरा सब किच है जिस देह सो पावे सदा सिवत सलाह तेरी नाम मन नमसा बहे नाम जिनके मन वसिया वाजे शब्द घनेरे कहे नानक सच्चे साहेब क्या नाही कर तेरा साचा नाम मेरा आधारो साच नाम आधार मेरा जैनो भुखा सब गवाइया कर शांत सुख मन आए बसया जैनो इच्छा सब पुजाइया सदा कुर्बान कीता गुरु विटो जिस दिया एहे वड़ियाइया कहे नानक सुनो संतो शब्द धरो प्यारो सच्चा नाम मेरा आधारो वाजे पंशब तित कर सुभागे कर सुभागे शब्द वाजे कला जित कर तारिया
पंच दो तदवास कीते काल कंटक मारिया तुर करम पाया तुद जिनको से नाम हर के लागे कह नानक तें सुख होआ तित हर अन्न हद वाजे अनंत सुनहो वड भागी हो सगल मनोरथ पूरे पार ब्रह्म प्रभ पाया उतरे सगल वसुरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पाए सरसे पूरे गुरते जानी सुनते पोनी कहते पवित सतगुर रहा भरे उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहाद तूरे सुनते पोनी कहते पवित सतगुर रहा भरे उरे बिनवंत नानक गुर चरण लागे वाजे अनहद तुरे मुंदावणी महला पंजवा थल विच तिन वस्तु पइयो सत संतोख विचारो अमृत नाम ठाकुर का पइयो जिसका सबसे आधारो जे को खावे जे को पुंचाए तिसका होए उधारो ए वस्त तजी नह जाई नित नित रख और तारो तम संसार चरण लग तरिए सब नानक ब्रह्म पसारो स्लो महला पंजवा तेरा कीता जातो नाही मैनो जोग की तोई मैं

कोई परस पया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वे हरेया तरस पया मेहरा मत होई सतगुर।

चलायो सब सीखन को कमै गुरु मान्यो गुरु ग्रंथ जी मान्यो प्रगट गुरा की जो प्रभ को मिलवोच है खोज शब्द में।

अगम्यागत ऊच आपार जो तुद सेवा है तिन पौ दुख नाहे गुर प्रसाद नानक गुण गाहे जो दिसे सो तेरा रूप गुण निदान गोविंद अनूप सिमर सिमर सिमर जन सोए नानक कर्म प्राप्त हुए जिन जपया तिसको बलहार तिसक संग तरै संसार को नानक प्रबलोचा पूर संत जना की बांछो तूर जिन जपया तिसको बलहार

कितने को सेवा प्रदान करनी, कीर्तन करदिया हुई अनेक प्रकार दिया फुला बख्श देनिया। धनवाद धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का, जिन्होंने आप तरस करके सिर से हाथ रख के कीर्तन की सेवा लई है। आप सब संगत का बहुत बहुत धनवाद, जिन्होंने बड़े एकाग्र चित नाल कीर्तन सरवण किया है। आओ गज वज के फतेह बुलाइए जी। वाहेगुरु जी का खालसा, वाहेगुरु।

दुख जन मरण भव खंडाए आव विनाशी प्रग पाया परमेश्वर व सोभ खंड ब्रह मंडाए अमरी मस्कीन प्राव तेरे राख राख वड वड्डा है जन नानक नाम अदार टेक अरना मेई सुख मंडाए राग गौड़ी पूर्वी महला पंजमा करू बेनंती सुनो मेरे मीता सत डैल की बेला इहां काट चलो अर लाया कै बसन सुहेला आहोद कटै दिन सटैना रे मन गुरमिल का सवारे राव

रत संग रहन कहन अमृत कल टालन। सतगुरु कल सतगुर तिलक सत लागै सो पै तरै गुर जगत।

सहस मुख फनिंद जियो जरम करम माछ कछ हूँ बराहा जमुना के कूल खेल खेलियो जे।

0: संभाले सबना, जिन करते करना किया चिंता भी करनी ता, सो करता चिंता करे जिन उपाय जग, तिस जोहारी स्वास तिस तिस दिवाणी पग, नानक सचे नाम बिन क्या टिका क्या तक महला पहला।
1: लखने कीच गई लख पुना प्रवाण, लख तप प्रतीर्थां सहज विवाण, लख सुतन संग्राम में छुटे प्राण।